हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? यस, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हिंदी के खंड पे, और आपके साथ हिंदी के खंड पर फिर एक बार जुड़ी है आप सभी के लिए मैं हाजिर हूँ। यस, मैं दौड़ के आई आप सभी से मिलने के लिए बहुत ही दूर से मैं दौड़ के आई आप सभी से मिलने के लिए FM ज़ोय 100.7 पर, और ठीक टाइम पर मैं पहुंची आपसे बातें करने के लिए। यस, और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइज़ोल FM ज़ोय 100.7, और आपके साथ हिंदी के खंड पर यस फिर एक बार जुड़ी है। यस आप सभी के दोस्त आरजे वीएली, और आप सभी कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे साथ आप सभी को हिंदी के गीत जरूर पसंद आएंगे दोस्तों। यस, और मुझे आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार रहेगा, और आपके इस बहुत ही खूबसूरत दिन को मैं और भी हसीन बनाना चाहूंगी दोस्तों। यस, आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़िए। यस, पूरे 3 बजे तक दोस्तों। यस, तो चलिए शुरुआत करते हैं, मतलब शुरुआत तो हो गई है, आरजे वीएली के साथ दोबारा इस खंड की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत आंखें भरी भरी, बहुत ही खूबसूरत गीत कुमार सानू की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए।

आंखें भरी भरी मुस्कुराने की बात कहते हो दोस्तों, यस, किसकी आंखें भरी हुई है? हम नहीं चाहते हैं कि किसी की भी आंख भरी हो और मुस्कुराने का मन नहीं करता हो, यस। FM ZOY 100.7 को सुनिए दोस्तों, और आपकी हंसी ना अपने आप मतलब आ जाएगी, ठीक है, यस। इसलिए आप कभी भी अपने आप को मतलब ऐसा महसूस मत कीजिए कि आपके पास कोई नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई हमसफर नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों। यस, जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, आप सभी को ना जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर एक चला गया तो कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए, जब कोई बात बिगड़ जाए, सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत, कुमार सानू की आवाज में गाए गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को कुमार सानू और साधना सरगम के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाया गीत जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा दोस्तों। यस, हम आपका साथ देंगे दोस्तों। जब कोई भी बात बिगड़ जाएगी ना, आपको जब भी मौका मिलेगा, आपको समय मिलेगा, FM Zohar 100.7 को सुनिए तो हम आपका साथ जरूर देंगे दोस्तों। यस, FM Zohar 100.7 ना, आपका साथ हमेशा जिंदगी भर यूं ही देते रहेंगे अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो, और हमसे बातें करना चाहेंगे तो। ठीक है, तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 10 मिनट बचे हैं दोस्तों इस खंड के लिए, और आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, आप सभी को पसंद भी आ रहा होगा। यस, एक प्यार का नगमा है। यस, चलिए सुनते हैं ये गीत, लेकिन थोड़ा पुराना है दोस्तों। और इस गीत के सुनाने से पहले आपके संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी। सीज तहियान एह नंग मा इनि ती कश्मिया लाउ तुकिन चु एंग एंगे मोती बुआई ले आ ओले हुन मन नुआम फोट ले फोट मई ना अरोन ती वेलानी सीज तहियान कन बरा खै अंगले आ अंगले मै द्रो चान पा एंग हियान आरजेवीएल के हि वाई लांगाई थंगाई लेम लौकनी आ मासे इ सेगमेंट आ हि चुआन इलो चोंग हुन हा किन कलो प्लेंगर ngar mai chin avan lomom em o pa eng ding mu avan cha kom le tak em o lekina rem changa te enge kanin hule thei tura be seila tro chan kanin mu ma lo chu lewin en kol chala fm zo oi te lo ngai thareng chin ro chuan hla de kan lo thlan sak reng thin ang che ole chuan अमोस की तरफ से संदेश आया है। अमोस सहियान, गुड मॉर्निंग, खूबसूरत आवाज वाली आरजेवीएल वीकेंड आपको बेहद मुबारक। मेरे लिए तो वीकेंड ही नहीं है अमोस। लेकिन मैं आपको वीकेंड की मतलब मुबारक देती हूँ, और हम दुआ करते हैं आपकी दिन शुभ और खुशियों से बीते। हमने सोचा था आप आज नहीं आओगे, मगर आपने तो आकर हमारे इस पल को हसीन कर दिया है। नर्तक तक खा रन प्लेज जे लंग से ओ रन यानी अमोस सहियान। वाओ, कितना खूबसूरत संदेश अमोस भेजते हैं हमें, इतना अच्छा लगता है पढ़ के। यस, तो इस तरह तो हमारा दिन तो यूं ही अच्छे से बीतेगा, जरूर बीतेगा। यस, और जा महियान इंगे ओम जिया मिनवन छोंग ने सब वे वी एल आर जे सी एस सांगते चुआन मिन बुम चियांग ले मै अप्रैल फूल निमेट रोजाम। तो चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्यारे दोस्तों को हमें सुनने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, एफ एम जो 100.7 को प्यार देने के लिए, जुड़ने के लिए दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर जी के आवाज में गाया गीत, थोड़ा सा पुराना है दोस्तों, एक प्यार का नगमा है मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को एक प्यार का नगमा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। यस, जिंदगी एक प्यार का नगमा है दोस्तों। आप जितना मतलब आपसे हो सके ना दोस्तों, आप प्यार बरसाइए एक दूसरे के साथ, और इस तरह हमारा प्यार भी हम सभी के साथ, आपके साथ, हमारे साथ हमेशा बरकरार रहे दोस्तों। यस, कभी एक दूसरे को डिसअपॉइंट मत कीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, आप खुशी खुशी से जिए। चलिए हम खुशी खुशी इस जिंदगी को, इस पल को मनाते हैं, जीते हैं। आइए चलिए, और मैं वापस आऊंगी दोस्तों अपने अगले खंड को लेकर 11:20 पर, ठीक है। यस, 11:20 पर मैं वापस आऊंगी दोबारा, और अगले खंड पर आरजे आ गई और वेस्टर्न म्यूजिक यस सुनाने के लिए, यस अपनी आरजे चॉइस वेस्टर्न म्यूजिक सुनाने के लिए होगी। और चलिए मैं चलती हूँ इस आखिरी गीत को लेकर, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, बहुत ही खूबसूरत गीत दोस्तों मैं सुनाना चाहूंगी। यस, और आप कभी मत सोचना कि जिंदगी आपसे नाराज नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। जिंदगी ना दोस्तों आपको कुछ सिखाने के लिए कभी कभी नाराज मतलब होने वाला फील कराती है दोस्तों, ठीक है। आपकी जिंदगी में कुछ भी आए ना दोस्तों, आप पीछे मत हटना, और आप बस आगे की तरफ सोचना और करना, और हमेशा अच्छा वाला मतलब अच्छे बात करना और सबसे प्यार करना, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी मेरी तरफ से इस

नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी हिंदी के खंड पर। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7। और आपके साथ फिर एक बार जुड़ी है आप सभी की दोस्त RJVLE। और दोस्तों, आप सभी का दिन कैसे बीत रहा है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा। यस, तो चलिए हिंदी के खंड की दुनिया में मेरे साथ डूब जाइए और मैं आपको हिंदी के अच्छे अच्छे गीत सुनाऊंगी। और मुझे आपके भेजे गए संदेशों का इंतजार रहेगा। और मेरे मेरे सबसे पहले खंड पे मेरे दोस्त जामन ने मुझे संदेश भेजा था मसे। मैंने समय की पाबंदी के कारण मैंने उनका संदेश नहीं पढ़ा। और तो चलिए इस बार तो मैं आप सभी के संदेश पढ़ूंगी। तो चलिए हम सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत इस खंड की शुरुआत के लिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। यस

0: मेरी तरफ से आप सभी प्यारे, प्यारे दोस्तों के लिए।
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

तो दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगा होगा गीत सुनकर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उदित नारायण की आवाज़ में गाया गीत मेरी तरफ से। यस, हर पेरेंट्स, माता पिता हमारे लिए मतलब सपना देखते हैं, एक सपना देखते हैं कि हम कुछ बने, हम कुछ करके दिखाएं उनके।

लिए, मतलब हमारे लिए भी। तो आप अपने माता पिता का कहना मानिए दोस्तों, यस, जिंदगी में कुछ करके दिखाइए दोस्तों, यस। तो चलिए आपके भेजे गए संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी। यहाँ पर संदेश आया है, संदेश आया है अमोस की तरफ से, यस। और अमोसहियान, खूबसूरत आवाज वाली आरजे वी, आपको शुभ 11:20 AM। हम आपको मीठे मीठे लंबे लंबे मैसेज भेजते हैं, इसलिए हमारे व्हाट्सएप को 2 दिन हम हमारे व्हाट्सएप 2 दिन हम नहीं चला पाए, इसलिए हम तो आपको SMS भेजने को भी डर लगने लगा है। सॉन्ग थोड़ी जगह, सिंगर अरिजीत सिंह। अगर ये गीत आपकी प्लेलिस्ट पर होंगे तो जरूर सुनाइएगा। मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ खूब खूब माइंड्स दबा माइंड्स में जितने भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। यस यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अमोस, इस तरह हमें संदेश भेजने के लिए। और मैं आपके इस फरमाइश गीत को भी आपके दोस्तों के लिए जरूर सुनाऊंगी। और दुर्गेश जी की तरफ से भी संदेश आया है, और दुर्गेश जी लिखते हैं गुड मॉर्निंग आरजे, नमस्कार, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, यस थैंक यू। यस, आपको भी शुक्रिया दुर्गेश जी। तो चलिए चलते हैं गीत की तरफ, लेकिन यहाँ पर जा महियान और जामा मैसेज कत्यार लौखा, जो उनका मैसेज मैंने नहीं पढ़ा वो मैं पढ़ना चाहूंगी। जा महियान आर जे वी एल इमो इड्यूटी पुइनु ब्यांग ताइतु की आर जे सी एस सांग ते खा अब्यांग ही कपियाई थोन लोक अंग मोले कंगई लुतुक मई चुती रुआल एरो कलोम बोक्सी का हैप्पी टॉप पर अंत्यानी जाम खान का फर्स्ट सेगमेंट था खान मो। तो चलिए सुनते हैं अमोस की तरफ से जो फरमाइश गीत उनके दोस्तों के लिए, थोड़ी सी जगह अरिजीत सिंह के आवाज पे गाया गीत सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और मैं चाहती हूँ दोस्तों आप सभी का दिन यूं ही हमारे साथ अच्छे से बीतता रहे, और मुझे अच्छा लगता है FM 100.7 पर आपसे बातें करने के लिए आना, आपको गीत सुनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और उसी की तरह मेरी तरह आप सभी को भी हमारे मतलब मेरे अलावा आपके दोस्त दूसरे आरजे जो हाजिर होते हैं आपको वेस्टर्न म्यूजिक सुनाने के लिए, मिजो गीत सुनाने के लिए, उनके साथ भी आपका मन अच्छा मतलब लगता होगा, आपको अच्छा लगता होगा। यस, तो चलिए आपके इस पल को और भी हसीन बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, अमोस के फरमाइश गीत के साथ, थोड़ी जगह मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को थोड़ी जगह अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। अमोस बहुत ही खूबसूरत गीत फरमाइश करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। यस, तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। यस, हमारे पास पूरे 11 बजे तक का समय है दोस्तों, और सुनते हैं ध्वनि की आवाज में गाया गीत वास्ते मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? एग्जैक्टली एट 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया। इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ध्वनि बानो शाली और निखिल दी स्वाजा के आवाज में गाया गीत वास्ते आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ, उनके ही आवाज में गाया गीत ले जा रहे हैं। यस, और तो ये मैं सुनाना चाहूंगी मेरे दोस्त FM ZOY 100.7 को सभी सुनने वाले मेरे दोस्त के लिए मैं ये गीत सुनाना चाहूंगी। और जो भी मुझे संदेश भेजते हैं, बहुत ही खूबसूरत संदेश, मीठे मीठे संदेश, उन सभी प्यारे दोस्तों के लिए ये मैं गीत सुनाना चाहूंगी, ले जा रहे। यस, तो चलिए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

0: Oh my God.
1: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ, पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #ouch #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
2: उसे बुदली से पहले उसे बता के तो जा।
1: क्या

0: क्या यार तुम लोग?
1: मैं नहीं आ रहा।
2: अरे कितना
1: रिलैक्स।
0: चल मैं अकेले।
1: चल चल तू जा भाई,
2: तू जा
1: जा।

दोस्तों साथ ही आ गए। सुनकर आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ना इस म्यूजिक वीडियो को देखेंगे ना, श्रद्धा कपूर और वरुण ने तो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इस गीत में। बहुत मतलब इतने टैलेंटेड कहाँ से आ जाते हैं, है ना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत टैलेंटेड होंगे। और मुझे पता है कि आप ही टैलेंटेड हैं बहुत ही मीठे मीठे संदेश भेजने के लिए। और अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत गीत, टूटा जो कभी तारा। और उस गीत से पहले दोस्तों, इस गीत से पहले मैं अमोस की तरफ से जो संदेश आया है मैं पढ़ना चाहूंगी। अमोस लिखते हैं कि मेरी फरमाइश गीत बजाने के लिए बेहद शुक्रिया, खूबसूरत आवाज वाली RJVL। इस तरह सबको खुश करते रहो। आपको मेरी उम्र लग जाए। जो सबको खुश करते हैं वो इंसान हजारों में एक होते हैं। थैंक यू। और हम गवाह से कह सकते हैं कि FM जो ऑय आपकी वजह से सवर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। ये आपकी बड़प्पन है जो इस तरह आप हमें ऐसा कहते हैं। अमोस बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। तो चलिए सुनते हैं मेरी तरफ से आपके लिए और मेरे दोस्त जामा जो हमें अभी सुन रहे हैं अपने काम करने के साथ साथ, और आप सभी के लिए भी। तो सुनते हैं टूटा जो कभी तारा मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

0: Ram.
1: वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिलहाल हमारे इस खंड के लिए आप सभी को आखिरी गीत सुनाने का समय आ चुका है दोबारा। और ये खंड है ना दोस्तों, आज के लिए मेरा आखिरी खंड नहीं है, मेरे लिए हिंदी के खंड यस 2 बजे मैं वापस आऊंगी अपने आज के हिंदी के आखिरी खंड को लेकर। यस, तो आप सभी का इंतजार रहेगा दोबारा मुझे, और आप सभी के प्यार और सपोर्ट और संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों फिर एक बार। और कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा समय नहीं रहता है।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वेली की तरफ से। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ज़ोय 100.7। और आप सभी का हम स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को दोबारा मेरे साथ आज के हमारे हिंदी के आखिरी खंड के गीत आप सभी को जरूर पसंद आएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को अच्छे अच्छे गीत सुनाऊं और आप सभी के भेजे गए संदेशों का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। और हमें उम्मीद है कि आप सभी का दिन यूं ही अच्छे से बीत रहा होगा। और वैसे भी आज तो यस सैटरडे है, आपको काम के लिए जाना नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, स्कूल जाना नहीं है, कॉलेज जाना नहीं है। यस, तो चलिए मैं आपके इस पल को बहुत ही हसीन बनाने के लिए कोशिश करूंगी इस गीत के साथ। और मैं गीत सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को एक प्यार भरा गीत सुनाना चाहूंगी, बहुत ही रोमांटिक गीत प्यार भरा, यस, जहाँ कोई भी दुख नहीं हो, यस, जुदाई ना हो बस प्यार ही प्यार हो, ऐसा वाला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आपसे। तो आइए सुनते हैं रात लंबियां मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे पेश किए गए गीत, हिंदी के गीत, यस आरजे बिले के साथ आप सभी को पसंद आ रहा होगा। और शाम के 2 बज चुके हैं, आप सभी क्या कर रहे हैं? हमें जाने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन आप बताते भी नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप सभी मुझे चुपचाप सुन रहे हैं। और क्या आपने चाय पी लिया? तो चलिए, आप सभी का दिन यूं ही अच्छे से बीता रहे। फिलहाल देसी गर्ल सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और विशाल ददलानी और सुनिधि चौहान की आवाज में गाया गीत देसी गर्ल आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को राधा गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा. और तो चलिए अब अगले गीत की तरफ चलते हैं. अगला गीत सुनेंगे चम्मक छल्लो. यस. और यहाँ पर अमोस की तरफ से संदेश आया है. अमोस सहियान, गुड आफ्टरनून, खूबसूरत आवाज वाली आरजे, क्या आपने लंच कर लिया? अरुंधति, यस हमने कर लिया. क्या आपने भी कर लिया? और मैं तो ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, कल संडे है, हम आपको बेहद मिस करेंगे. सोमवार को फिर से आओगी ना अपने सेगमेंट पर? पता नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकती अमोस, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्द ही इस FM से 100.7 पर हाजिर रहूंगी. तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, चम्मक छल्लो, बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

और दोस्तों उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को आप सभी ने सुनकर एंजॉय किया होगा। दोस्तों अब हमें आखिरी गीत के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, और आज जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, हमें संदेश भेजे, उन सभी को हम दिल से शुक्रिया अदा कहते हैं। आपके पास और एक खंड है वेस्टर्न म्यूजिक आरजे आंगई के साथ, और ये मेरा आज के लिए आखिरी खंड है, और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी से इस FM 100.7 पर जल्द ही मुलाकात हो। तो दोस्तों एक बहुत ही मस्त गीत, यस, जो आपके अंदर के सोए हुए को जगा दे, वैसा वाला गीत से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। दोस्तों आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7, और आपके साथ हिंदी के खंड पर जुड़ी है आप सभी के दोस्त अजय वेली। तो चलिए काला चश्मा से आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। तब तक लिए दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है, अजय वेली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बाय।

0: Hey, Akashvani FM zo is up in pasari chinga pon so ani me ni kwa sang ni som ni paruk ani atlai dar ni le mini som nga pakwa ani kan program thok khat na chu kan lo zo ta a ngai thatu zong zong te kan program in ngai thak sak awang in lom thu kan so ya primary channel achanga program lak chon kan ngai thak chun zoma program puang tu hi vil ni zwali kania engineer duty hilal nun tluang ani FM zo hitlai dar li le mini som ni pariata kan lo let le anga min ngai thale cheu turin kan so ma chu
1: But baby, at what price? Something so strange.
2: That was Million Dollar Man by Lana Del Rey, and with that song we're gonna conclude this segment, and it presents to you from Akashvani Aizawl. Hey, Akashvani Aizawl ani dar thumani ah tuna chu news bulletin hindi apuan Delhi changalak chhon ilongai thangu.
3: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
5: शुभेंदु अधिकारी

0: ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: শপথ গ্রহণ কে প্রক্রিয়া কে অনুসার সবসে পহলে শুভেন্দু অধিকারী নে মুখ্যমন্ত্রী কে রূপ মে শপথ লি। উসকে বাদ এক এক কর মন্ত্রী কে রূপ মে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, অশোক কীর্তনিয়া, খুদিরাম টুডু আর নিশিত প্রামাণিক নে শপথ লি। আকাশবাণী সমাচার কলকাতা সে কাশফিন নাহার।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, किसी अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
2: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़े पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुरेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपे जाली समर्थन पत्र की कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। BJP legislature party leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor Arun Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds, Kolkata. 5 cabinet ministers also took oath, along with the Chief Minister. The cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu.
5: Today is Pochishe Boishakh, an auspicious day, birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Thakur, which is celebrated across the state. This day has been selected for the swearing-in ceremony of the new

अनभावन प्रोग्राम की शुरुआत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर और जी शनिवार है, शनिवार की आपकी दोस्त सीमा वर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब है आपकी बहुत सारी फरमाइशें लेकर। और जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया है, हम आपको बता दें कि आप एफएम गोल्ड 100.1 के साथ हैं। एक प्रोग्राम शुरू होता है जी जिसका नाम है मन भावन और इसमें आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com। और हर बार की तरह पहला गीत मेरी फरमाइश का आप सबके लिए। आप मुस्कुराते रहिए और हम तक अपना संदेशा पहुंचाते रहिए fmgoldairdelhi@gmail.com। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार।

अर्ज तैयम साहब सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 पे FM जोय। आज शनिवार का दिन है, बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज के दिन हम आपके लिए बहुत सारे बॉलीवुड के गीत प्रस्तुत करने वाले हैं और आशा करता हूं कि आपके संदेश भी हमारे लिए भरपूर आएंगे पढ़ने के लिए। हमारे पिछले भागों में हमारे दो आरजेस के गीत सुने थे आपने, हमारे इंग्लिश आरजे और हमारे मिजो आरजे दोनों की बहुत ही खूबसूरत गीत सुने। तो अभी हमारे साथ बॉलीवुड के गीत सुनने वाले हैं, तो पहला गीत अधिक समय ना लेते हुए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि होगा जमाना लगे। अरिजीत सिंह को याद करते हुए, उन्होंने गाना अभी फिलहाल छोड़ दिया है बॉलीवुड के लिए, फिर भी ये गीत जो है उनका अंतिम गीत मैं आप सभी के नाम प्रस्तुत करना चाहूंगा और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं यानी कि आकाशवाणी आइजोल FM 107.7 के साथ आरजे टाइम्स आपके लिए गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं जमाना लगे।

तो इस खंड का पहला गीत मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर ही दिया था, जमाना लगे, मेट्रो इन दिनों फिल्म से प्रीतम के संगीत पर और अरिजीत की आवाज पर। तो इस गीत के बाद अगला गीत मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रस्तुत करने वाला हूँ। आप सब जानते हैं आरजे टाइम्स जब भी आते हैं तो आपके लिए नए के साथ साथ पुराने गीत भी लेके आते हैं। तो इसी के साथ मैं अभी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ अकेले हम अकेले तुम फिल्म से गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाजों में। गीत के बोल, राजा को रानी से प्यार हो गया।

को रानी से प्यार हो गया। इस गीत के बाद यहाँ पे मेरी रानी की एसएमएस भी आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रानी, एसएमएस एम एस हलो मैया और जो गयो पहले दीप्ति यानी मोंग आई ओम फॉर तेनी। मैंने भी आपको बहुत याद किया मेरे दोस्त, मेरी रानी गुरी साइलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल उंगा इतला जे लंग चे तुन लाई चु कई फांग लम हो वन रे तलत में तेनी खोच सक लम हो ले तो नियंग तरो अनी लो पुन अ ब्रेक हु ना खान एंग मोते ते तुई मोते ते नेन खान लो लार ले गा दिखान पोर ले एम एम गा तीन खान दी दोन नी मो इ प्ले ले तुर का पार पार इ पु नियंग चुनिन आर के एंग अनि बोका जेल जामा ngakte pa ta ni boxe chonin omega sangte vi kung te una pa hi re khop me and the duty like a chuning tin tin nge mani thi chil lampang thega sai welin ga hria ti wel khan mo a thi chil la ba hi chon tla na thei ne or meng moi te a mr meng moi te bahut bahut shukriya yadi aap mujhe sun rahe ho to yahan pe geet aapke liye chuna gaya hai mat lunga ke liye bhi और गुरुद्वा तपा तांति पकने बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे इस उम्मीदों के साथ। अगला गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा यस बॉस फिल्म से। जी हाँ, फिर से एक बार अभिजीत और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में गीत के बोल मैं कोई ऐसा गीत गाऊं।

यस बोस फिल्म से गीत आपने सुना था। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं अभिजीत और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाजों में, तो ये गीत फिर से एक बार मैं अपनी रानी नूरी के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा। और इसी के साथ अगला गीत सुनने से पहले यहाँ पे जितने भी संदेश आए हैं मैं फटाफट पढ़ के आपको फिर से एक बार सुनाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि थी चि लम्पंग ती खा नहीं उन पा ही गई दान दिला उपो ने मैं थे ये थी हम थोर उन सही दोन गे नहीं यार जो उन पा का लकलो दे बोलो हमले तितलत मेरे गन ओ दोने मो मिन गाय दम फ्राप ते ओ ते ने गाय दम मंग चे नहीं चुवन हे जन इन चुका थी खोप मे चे मा से यू ना पा ता नि रे नम ती का श्री आ तु जोक गे नहीं ओ इंग्लिश लम गे मिजो लम जोक कंग गई तो आलो चे ओ नेक्स्ट का इटाली ले ते बोगा रे na ka ngai tuam viao ngai zanin chio Mr. Mengmote ya likhte hai Mr. Thames namaste div tin humne bahut bahut shukriya mere dost agla geet main aapke liye prasut karna chahunga aur yahan pe kiski pu aaya hai yahan pe parpari ki pu aaya hai to likhte hain arse kalo gai tha e izakir le tur kha Mengmote ya nguri sailo ngak te pa bil khatir tan le jela zama telo ngai thaka tan nangma mai lawin bahut bahut shukriya aur ye geet मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ फिर से एक बार किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज में एक गीत के बोल। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है गीत। जितने भी लोग पुराने जमाने के गीतों को पसंद करते हैं आप सभी के नाम में प्रस्तुत करना चाहूंगा आर डी बर्मन के संगीत पर। तो आइए चले सुनते हैं प्यार दीवाना होता है।

किशोरदा की आवाज में हमने ये गीत सुना था, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। प्यार तो हमेशा दीवाना होता है और मस्ताना भी होता है, गीतों ने भी यही कहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे अगला गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये गीत होगा हमारे इस पहले भाग के लिए अंतिम गीत। मैं आपसे मिलूंगा फिर से एक बार बहुत ही जल्द बॉलीवुड के नए पुराने खूबसूरत गीतों के साथ। तब तक हमारा इंतजार कीजिएगा। कितने बजेंगे लौटूंगा मैं आपको बताने वाला हूँ, 7:30 पर दार्शरीले मैंने समथु मगालो ले तेंगा हिंदी लमोय तक तक नैन। तो यहाँ पे अंतिम गीत अभी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा बाजीगरो बाजीगर। जी हाँ, बाजीगर फिल्म से गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, अनु मलिक की संगीत पर कुमार सानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाजों में। तो आइए चलिए सुनते हैं बाजीगर और बाजीगर। इसके बाद आने वाली है आपकी प्यारी सी सुरीली सी आवाजों के मालकिन जी हैं आरजे अनंत, उनका साथ भी अच्छी तरह से दीजिएगा। और जाने से पहले सीजत क्या लिखते हैं, ए हे लो मृगन मो रेडियो का ओना यस पोस्ट फिल्म ला लो रिया मक्कत वेव जो तू तक छु दिव तीन मो कतिया ओले दिव तीन ओम पोट्स ले जन रिया ए दोन छे तीन मिलो एक दोन ने ओ चुअन दर्सरी आगल ले दे दोन कति का वी कुंग ते मेरे भाई उना पा लिखते हैं आरजे उना पा अतुंगे मिंती एम का अन पनी खा नो तीन पखत छो सो कतले ए मे पथुम तल लम से कति सेन तीन पथुम ना तान तुंगे ने ओ हे लमा कंट्रोल रूम मी कारण पुन मे दोन मी मो उना पा। तो अंतिम गीत बाजीगर ओ बाजीगर, इसके बाद मिलते हैं 7 बजे।

हेलो नमस्कार और भाई दोस्तों, मैं आरज अटैम साहब सभी श्रोताओं का दूसरी बार स्वागत कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं 107.7 पे एफएम जवाई। जी हां, आकाशवाणी आइजोल एफएम जवाई से भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूं बॉलीवुड के नए पुराने खूबसूरत गीते। हमारे पिछले भागों की तरह इस भागों में भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं बहुत ही बढ़िया दमदार गीते। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं इस खंड को शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा आप सभी से। पहला गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूं ये होगा सचिन जिगर के संगीत पर आतिफ असलम की आवाज पर। जी आप कौन सा गीत है गेस्ट कीजिए। ये गीत होगा बदलापुर फिल्म से, गीत के बोल जीना जीना।

अभी जो गीत आप सुन रहे थे ये था बदलापुर फिल्म से जीना जीना आतिफ असलाम की आवाज पर और सचिन जिंगर के संगीत पर। हम सब जानते हैं कि आतिफ असलाम पाकिस्तान से हैं, तो बॉलीवुड में इनके बहुत सारे गीत हम सुन चुके हैं, बहुत ही दमदार आवाज है इनकी। तो इसी के साथ यहाँ पे अगला गीत सुनने से पहले फिर से एक बार मैं आपके संदेशों की ओर नजर रखने वाला हूँ। हमारे दोस्त असीजत क्या लिखते हैं, क्या गजब करते होगी लव स्टोरी। ठीक है, मैं ढूंढता हूं, अगर मिला तो मैं जरूर आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। लव स्टोरी का मतलब ये फिल्म का नाम है या गीत का नाम, सीजर जी आप थोड़ा डिटेल्स में बताइएगा। ठीक है, रथिया मेमो का सही का क्या गजब करते होगी दिखा फिल्म मिंगनी एम ये लमिंग जोक दिखा लव रिपोर्ट लेला ट्रॉग। तो इसी के साथ अगला गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। आजकल ये गीत बहुत ही फेमस है, हर घर में, हर मोबाइल पे, खास करके टीनेज जितने भी हैं उन सभी के होठों पे ये गीत है। ऑटोम्स की ओर से हम आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं सुकून। तो आइए चलिए सुनते सुकून।

दिल को सुकून देने वाली गीत आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया था। गीत के बोल भी थे सुकून। तो इसी के साथ यहाँ पे अगला गीत सुनने से पहले फिर से एक बार मैं आपके संदेश की ओर नजर रखने वाला हूँ। तो ये संदेश आया है, ओ लव स्टोरी फिल्म कर गौरवा देखा। ओके, क्या ये मतलब कर गौरवा? ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। ठीक है, लव स्टोरी फिल्म, थोड़ा इंतजार कीजिएगा सीजित। और इसी के साथ यहाँ पे अगला गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, तुम हो तो सैयारा फिल्म से होगा। जितने भी लोग सैयारा फिल्म को देखे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि हीरो हीरोइन की एक्टिंग के बारे में बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की थी इन दोनों ने, नए कलाकार। फिर भी इन पता ही नहीं चलता कि बॉलीवुड पे नए हैं, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं। तो विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाजों में हम सुनने वाले हैं तुम हो तो।

0: यार, फिल्म से ये गीत आप सभी के नाम मैंने प्रस्तुत किया था, तो अगला गीत सुनने से पहले ये हमारे दोस्त मीनल अहमद करीमगंज से बहुत दिनों के बाद फिर से इनसे एक बार जुड़ने का मौका मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये क्या लिखते हैं मैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ। मीनल जी, आप कैसे हो? सॉन्ग हमदर्द, मूवी एक विलन, सिंगर अरिजीत सिंह, मीनल अहमद फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट करीमगंज। मैं यहाँ गाना सुनना चाहता हूँ और डेडिकेट करना चाहूंगा सबसे पहले आरजे आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सभी आरजे के लिए डेडिकेट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे दोस्त दो आरजे हैं, मिजो आरजे और इंग्लिश आरजे दोनों के नाम, ठीक है? तो शुक्रिया मेरे सभी दोस्तों के लिए, हितेंद्र दास, हमे मानबा, लिंगदियो, रोमोना मैम फ्रॉम गोवा। सच्ची दोस्ती हर दिल का नूर होती है, खुशियाँ का एक अनमोल तोहफा होती है, जो हर मोड़ पर साथ निभाए, वही दोस्ती की असली परिभाषा होती है। वाह, क्या खूब कहा है! आपके संदेश पढ़ के मुझे भी मेरे दोस्तों की बहुत याद आ रहा है। और यहाँ पे अगला संदेश, गुड इवनिंग आरजे, नमस्कार दुर्गेश नागनपुरे और पूरे फैमिली, बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार दुर्गेश जी आपका संदेश पढ़ने को मिला है। आशा करता हूँ कि आप और आपके पूरे परिवार सहित सुकुशल रहे होंगे। तो अगला गीत मैं आपके नाम भी प्रस्तुत करना चाहूंगा, यहाँ पे सीजत का फरमाइश आया था, तो सीजत तुम दोनों क्या गजब करते हो जी जी लव स्टोरी फिल्म से ये गीत सुनना चाहते थे, तो ये गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। जितने भी लोग पुराने गीत को यानी कि ओल्ड इज गोल्ड मानते हैं, आप सभी के नाम ये गीत होगा, आशा भोसले की आवाज पर और आर डी बर्मन की संगीत पर। तो आइए चलिए सुनते हैं क्या गजब करते हो जी।
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

क्या गजब करते हो जी इस खूबसूरत गीतों के बाद। यहाँ पे अगला गीत सुनने से पहले संदेशों की ओर हम नजर रखेंगे और फरमाइश आई थी मिनाल अहमद करीमगंज के, तो मैं आपकी यार फरमाइश पूरा करने जा रहा हूँ, अभी थोड़ा इंतजार कीजिएगा। उससे पहले सीजत लिखते हैं कफा लोम ट्री ने ओ का गेम्स खेल लाई दा मे विन कंगाई खाओ, बहुत बहुत शुक्रिया इन गेम्स के खेला कन खेलते ही नन फे आई नन फे चुन कि ना कल चैलेंज दोन यो स्क्वाड खाता था पुन का नोम थे बोगा ने। पर यहाँ पे जग घूमिया सुल्तान फिल्म से सुनना चाहते हैं दुर्गेश नागनपुरे और पूरे फैमिली, तो चिंता मत कीजिए समय रहा तो जरूर आपके लिए भी मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। पर अभी मीनाल जी की फरमाइश पहले आया था तो मैं उनका फरमाइश पूरा करने जा रहा हूँ और उनके सभी मित्रों को ये डेडिकेट करना चाहते थे, जैसे कि मैं हमें और हमारे दो दोस्त को कहेंगे और हितेंद्र दास हमें मानबा लिंगदियो रोमोना मैम फ्रॉम गोवा आप सभी के नाम। तो अगला गीत में मिनाल के सभी दोस्तों के लिए और हमारे दोस्तों के लिए और आकाशवाणी आज एफ एम 107.7 के साथ जुड़ने वाले सभी श्रोताओं के नाम में प्रस्तुत करना चाहूंगा हमदर्द, एक विलन फिल्म से होगा अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज में। अरिजीत के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, उनकी तारीफ जितनी भी करो कम पड़ जाएगी, तो मिथुन के संगीत पर तो आइए चलिए सुनते हैं।

हमदर्द गीत हमने सुना था, ये एक विलन फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज पे और मिथुन के संगीत पर। तो ये गीत अपने सभी मित्रों के लिए उन्होंने डेडिकेट किया था। तो उनकी एक और संदेश छूटे हैं मुझसे, तो मैं फिर से एक बार पढ़ के सुनाने वाला हूँ। मिनाल अहमद जी, आपकी संदेश इतनी मीठी है कि ये आगे लिखते हैं। आरजे जी, मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हो सर जी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये आगे लिखते हैं, लफ्जों में क्या लिखूँ उस रब की तारीफ, जो ना मांगू तो नवाज देता है, जो मांगू तो भी तो बेहिसाब देता है। मैंने अपनी हर दुआ में तेरे लिए दुआ मांगी है, मैंने अपनी हर दुआ में तेरे लिए दुआ मांगी है, तेरे लिए उस रब से तेरी ही खुशी मांगी है। ना आए तेरी जिंदगी में कोई भी गम, ना आए तेरी जिंदगी में कोई भी गम, मैंने उस रब से तेरे लिए ऐसी जिंदगी मांगी है। वाह वाह वाह, क्या खूब, इतनी मीठी शायरी कहेंगे या संदेश, हमारे लिए भी कोई लिख दे तो हम तो पूरे फिदा हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपका संदेश पढ़ के। तो अगला गीत होगा यहाँ पे हमारे पूरे जग घूमिया फैमिली के लिए, माफ कीजिएगा दुर्गेश नागनपुरे, और पूरे फैमिली के लिए मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा सुल्तान फिल्म से। सलमान खान और अनुष्का शर्मा थे इस फिल्म पर, राहत फतेह अली खान और विशाल शेखर के संगीत पर। जी हाँ, ये गीत जितने भी लोग सुल्तान फिल्म को देखे, आप सब भाईजान को तो पसंद ही करते हैं, तो फिल्म के साथ साथ गीत भी बहुत ही दमदार हैं, राहत फतेह अली खान की आवाज पे और विशाल शेखर के संगीत पर। तो आइए चलिए सुनते हैं जग घूमिया, और इसके बाद दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार मिलूंगा कितने बजे, रात के 9:02 पर। जी हाँ, फिर से एक बार मैं बॉलीवुड के गीतों के साथ लौट के आने वाला हूँ। तब तक हमारा इंतजार कीजिए, सुनते रहे आकाशवाणी आइजोल एफ एम वॉइस 107.7। अभी के लिए आपके आरजे को विदा दीजिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द। सुनने वाले श्रोताओं, आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं 9 बजे।

हेलो नमस्कार उचिवाय दोस्तों, मैं आरजे टाइम साहब सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 पे FM जो हिंदी का। आज का हमारा आखिरी भाग होने वाला है, तो दोस्तों कहीं छोड़ के जाइएगा हमें, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा था कि आप हमारा साथ अंत तक देंगे, तो अंत का समय आ चुका है। फिर भी हम आपके लिए बहुत सारे नए पुराने बॉलीवुड के गीत लेके आए हैं, इसी उम्मीदों के साथ आपका मनोरंजन करते रहेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला गीत इस खंड का जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा नज्म। नज्म बरेली की बर्फी फिल्म से होगा, बहुत ही खूबसूरत गीत आयुष्मान खुराना की आवाज़ में। तो आइए चलिए सुनते हैं नज्म नज्म।

नज्म नज्म, जी हाँ, ये खूबसूरत गीत हमने सुना था आयुष्मान खुराना की आवाज पे। तो इस गीत के बाद अगला गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा जिगर फिल्म से। बहुत दिनों के बाद गीत को हम सुनने वाले हैं। जितने भी लोग जिगर फिल्म देखे हैं, आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे अजय देवगन और करिश्मा कपूर थे इस फिल्म पे। उन दोनों की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया था, तो उस समय के जमाने में भी ये फिल्म बहुत हिट था, तो गीत भी बहुत हिट थे। तो आइए चलिए सुनते हैं गीत। जितने भी लोग पुराने जमाने के गीत को पसंद करते, फिर से एक बार उन सभी को याद करते हुए आकाशवाणी आइजोल।

एफएम समय सौ दशमलव सात से आरजेड एम साहब के लिए प्रस्तुत कर रहा है अभी के लिए प्यार के कागज पे दिल के कलम पे। जी हाँ, ये गीत में बहुत दिनों के बाद सुन रहा हूँ, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, पुराने दिनों की यादें ताजा हो रही हैं। अभिजीत और साधना सरगम की आवाज पे, आनंद मिलन के संगीत पर, तो आइए चलिए सुनते हैं प्यार के कागज पे।

जिगर फिल्म से ये गीत था प्यार के कागज पे। श्रोताओं, आप सबको पसंद आ रहा होगा हमारे प्रस्तुत किए गीत। तो अजय देवगन, करिश्मा कपूर थे अभिजीत, साधना सरगम की आवाज पे, आनंद मिलन की संगीत पर। तो इसी के साथ संगीत को थोड़ा विश्राम देते हुए हम आपके संदेशों की ओर नजर रखने वाले हैं। अभी यहाँ पे पहला संदेश किनका पढ़ू, मैं यही मैं सोच रहा था। गाते पा बिल्कुल फिर से लिखते हैं आर्जते जीना जीना सो खाई थाइला तो मुजौलो थूले ललमा कन मिरिल पनी वी कुंग लेरा मेग मोय ते तान निलोवी नि तान ले ओमेगा सांग ते तान का लान फाइव ओके फ्रॉम हक ते पा बिल का क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया मासे मासे मासे ओम तक मे नि जिना जिना ही सेगमेंट मसा लमा कन लो प्ले तो अ लदंग कंदु ते नै छोन लो थोन ले फदोनियो और मोय लो मे यहां पे एलजे साइलो का एसएमएस सीजत लिखते हैं कमुत्तताई मैं तेरे बीक लवनिया इन मिनवा प्रैंक पनी मिनवा प्रैंक चिंग वे आ मो ऐसे कमुत्तताई मैं तेरे बस बीक लवनिया तेरे श्रावणिया मिस्टर मैंग मैं तेरे लिखते हैं मिस्टर टर्म्स इताले इन पुई तोर तांडी है वो लिया तेरे हेल कोई लमाग या मंग ओ जनगाई ने जेलर जावा ट्रंड हंड लते खाई और जो टर्म्स इलाव दी तेरे रंग मो अवन पुई वंग वंग तक एम ihowin hun putini dasi asam sei sakna hun rem chang tamzo ka liam ta bung wangani next song mun dasi vairam pura sam nei nin pani ta no a heo ka tan chun lo ram ro se mun putini hian in zom na nei ka du mi a lo ni o mun putini tan chau ni ro se tun ri chon to yahan pe mere bhai unau pa vi kung te aur jona gas boy apne sandesh ke liye thoda intezar kijiye ga hai mizo ka chiar al nge nge dona ni to agla geet me aapke liye prastut karne wala hu दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। ये गीत सुनने वाले हैं मैंने प्यार किया फिल्म से। जी हाँ, सलमान खान और भाग्यश्री थे इस फिल्म पे, लता मंगेशकर की आवाज पर। जितने भी लोगों ने इस फिल्म को रोमांटिक मूवी को देखा है इन दोनों की एक्टिंग को पसंद भी की होंगे। राम लक्ष्मण की संगीत पर, जी हाँ, लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज पर। तो आइए चलिए सुनते हैं फिर से एक बार दिल दीवाना बिन सजना के माने ना।

दिल दीवाना बिन सजना के माने ना इस खूबसूरत रोमांटिक गीतों के बाद यहाँ पे फिर से एक बार मैं संदेशों की ओर नजर रखने वाला हूँ। बहुत लंबे समय का इंतजार करना पड़ा मेरे भाई उनापा विकुंगते को। ये लिखते हैं आरजे उनापा जनिन चु अनुअम बोकेम अनुअम लुतुक अनुम नछन चु खाई श्रियत रंग खातर सही तमंगाई लौंगा ईरानी ते पन्नी नैन गन दिवती दूना दुम का तिखोप में गेपन मो कसई थी दोन लो यू नाउ पाई जनी छु अरे नम लो तीला इति सयान खान का हम लोग ने ती खलो खदो दो नियो दिंग ले भया नुलाते न रन कर ओके अनुम दोन ले मे लो इन ती थे ले आंग चेते रे मे इन ती थे ना नेसन का खतनी जनी छु जोनगोस बॉय कोवेला मिलेर लुदो गेस मेस कंचियर लेगा लिखते हैं लेरा नमस्ते तुहोंग तकिन होंगला डिप्टी ले वतलाई हो konga film kurla i playlist te nangma tan ke ma tan se mai babi tan ni don lo mi a moi lu tuklat pr ke kagas pe jigar flun la chu zanin chi babi kanga re me tu zo khange ne o babi kanga to lu tuka a ming ne na ron lam lo chuan kari strel zel lo ni chu aur yahan pe a glass of spirit se bar me parne wala hu git sunne se pehle aur jo tem se play tor kha ngakte pa bil khir khir tan le RJ Zorini mai how lovina tene in ti thaidon khop me janina kan RJ duty pui pani te himo dil diwana season o kan luang liem ve utura kan gai ni dil diwana kan gai thla khat buka rama tu re lesa misikan ke klok anga agla git sunane ke baad me padne wala vidam thak ye poga besi poga ni o to agla git me abhi aapke liye me prastut karne wala hu ye hoga mera man kyu tumhe chahe mera man ji ha mir khan aur manisha koirala the is film pe udit narayan aur alka yagnik ki khoobsurat awaaz pe ye geet main aapke liye prastut kar raha hu akashwani aizol fm zoe so the sunnal saats

मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। इस गीत के बाद अगला गीत जो होगा आज के लिए हमारा अंतिम गीत होने वाला है, पर दोस्तों बहुत ही जल्द मिलेंगे। जाने से पहले यहाँ पे आपके कुछ संदेश छूटे हैं, मैं फटाफट पढ़ के सुनाने वाला हूँ आपको। ओमेगा सांगते लिखते हैं, और जो टेम से प्ले ले तो और का, मैंने ये पढ़ लिया था, जोरी ने के लिए भी चुना था इन्होंने। जोन अगस बॉय लिखते हैं, की तमी का मुतुइले रंती बुगरी नगपो मुतुइले मेरे दोस्त कोवेला मिलेर बेरपा। और मेरे रंग में रंगने वाली मैंने प्यार किया फिल्म से लिसनर्स दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये गीत मैंने प्यार किया फिल्म का गीत मैंने अभी भी प्ले किया था, तो दोबारा प्ले नहीं हो सकता है, माफ कीजिएगा। पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान थे इस फिल्म पे, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में हम सुनने वाले हैं कोयला फिल्म से। जी हाँ, गीत के बोल तन्हाई तन्हाई, थोड़ा इंतजार कीजिएगा उसके लिए। और जितने भी लोगों ने ओके रमा तुरियल लिखते हैं, तुरियल रैम्बो, और जो टेम्स चिबाई नक्तु का दम दोइने चंगिन का छुक तो दोन टीका रन रेल मई मई चे का रेल लो चिचु अनि रन कल क्लोन दोन सिया बेन वार मिन तिचियांग मई तिनि ते रेंग मई रमा तुरियल रैम्बो लो दम छजे लंग सियो चोंग ट्राई ना कन ट्रेनिंग चेलिया और छेल तकिन गंती का रम्बोई नि का। तो अंतिम गीत इस खंड का कोयला फिल्म से तन्हाई तन्हाई। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, सुनते रहे आकाशवाणी आजल एफ एम 107.7। आरजे टेम्स को अभी के लिए विदा दीजिए, इसके बाद आने वाली है आपकी इंग्लिश आरजे, और ये होने वाला है लाइव एफएम पर। जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो आइजोल पेज को आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, और हमें लाइव देख सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, सभी को टाटा बाय बाय, शुभरात्रि।